श्रीदीप नारायण भगवान की, श्री सुदेव पुरुषा महादेव की, हिमालयन अवतार श्री अलक पुरुषा महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट परमहंस श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी भगवान की, विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगिराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी गुरुदेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय, सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र उस दिव्य महान परंपरा ओम श्री अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा के सभी महान ऋषियों को प्रणाम करते हुए, प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में वंदन करते हुए, मंचस्थ महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज और इस परम पवित्र परम दिव्य आयोजन में जिसके निमित्त आयोजन है, ऐसे हम सब के आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी के उस दिव्य कृपा से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सत्संग का दिव्य लाभ ले रहे हैं। इस सत्संग सभा में, इस सत्संग त्रिवेणी में, इस सत्संग की बहती गंगा में विराजमान समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, धर्मानुरागी भक्तजन जो अपने अपने घर गांव परिवार को छोड़ करके इस अमूल्य दुर्लभ सत्संग का लाभ लेने आए हैं, घर भी बैठ सकते थे लेकिन परमात्मा की कृपा से आपके हमारे मन में प्रेरणा हुई कि हम भी सत्संग श्रवण करें, तो परमात्मा की परम कृपा से यह ऐसा अवसर आता है। कहते हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में कहा,

भाई, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पश्चात ऐसा समय आता है जब हमको सत्संग प्राप्त होता है। कब होता है? जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, युग युगांतर के पुण्य एक साथ आते हैं, तब जाकर के हमें यह सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग भी ऐसे परम पवित्र उस दिव्य धाम में, जो समस्त वेदों का मूल, शास्त्रों का मूल, उपनिषदों का मूल ओमकार है, उस ओमकार की रचना करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्राप्त हो, तो इसकी महिमा और अनंत गुना बढ़ जाती है। तो आप हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में इस दिव्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, परमात्मा ने हमको जो यह मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? खाना पीना, सो जाना, परिवार बढ़ाना, क्या यही उद्देश्य? नहीं, ये तो ठीक है। संसार में जिस प्रकार से हम रहते हैं, उसी प्रकार से पशु भी रहते हैं। पशुओं का भी परिवार होता है, वह भी परिवार को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। अरे देखो, बिल्ली को देखा है ना, बिल्ली मौसी अपने बच्चे को सात घरों में ले जाती है, कितना पालन करती है, घर नहीं होता है, तो वो भी बच्चों का पालन करती है। और हम यदि अहंकार करने लग जाए कि बच्चों को पाल पोस करके हमने कोई बड़ा काम कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, हम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक उद्देश्य यही है कि संत चरणों में आकर के हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन, भक्ति, उपासना, साधना, घर परिवार छोड़ करके नहीं, परंतु घर परिवार में रह करके ही करना चाहिए। तो परमात्मा की कृपा से ऐसे महापुरुष जिनकी हम आज 62वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार वंदन करते हुए हम सबका जीवन भी उस दिव्य परम ज्योति की तरह उज्ज्वल हो, प्रदीपित हो, और हमारे जीवन में भी वह प्रकाश आए गुरुदेव की कृपा से, कि हम भी आनंद से परिपूर्ण हो जाए। देखो, गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। बिना गुरु कृपा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। एक अज्ञानी मनुष्य था, वह न तो महात्मा को मानता था, न भगवान को मानता था, न संत को मानता था, किसी को नहीं मानता था। एक बार संत महाराज उस गांव में पधारे, और जा करके संत जब आते हैं क्या करते हैं? संत आकर के भगवान से मिलाने का ही कार्य करते हैं। संत हमें परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग होता है, उस मार्ग को दिखलाते हैं। तो संत जी ने उस अज्ञानी व्यक्ति से जा कर के पूछा कि भैया, मैं तुमको कैसा दिखता हूँ? अब उसे न संतों से मतलब था, ना किसी से मतलब था। उसने कहा, महाराज आप तो हमारे जो गांव में बूढ़ा पाड़ा है ना, वैसे दिखते हो बिल्कुल। संत ने कहा, अभी इसका अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है, बिल्कुल मलिन है। संत ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा दिखता हूँ ठीक है, लेकिन तुम यह करो, मैं जो तुमको मंत्र दे रहा हूँ, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए दे रहा हूँ, यह नाम स्मरण करते रहना। फिर संत जी एक साल बाद आए और पूछा, भाई अब कैसा दिखता हूँ? बोले, महाराज अब थोड़े मनुष्य जैसे दिखने लगे हो। संत जी ने कहा, ठीक है, जो मंत्र दिया है उसको निरंतर जप करते रहना, छोड़ना मत एक दिन भी, मैं तीर्थ यात्रा करके वापस आता हूँ। कुछ समय बाद संत जी महाराज गंगा, हरिद्वार, काशी स्नान इत्यादि करके आए, और फिर उसको पूछा कि भाई अब कैसा दिखता हूँ? महाराज अब आप देवता जैसे दिखते हो। महाराज जी ने कहा, अब कुछ और जो है इसको अंतकरण पवित्र हो जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार और गए और जा कर के फिर वापस आए, तब उस मनुष्य ने आकर के क्या किया, सीधा दौड़ करके आया जैसे गुरुजी आए, और आकर के दंडवत प्रणाम किया। बोले, प्रभु आज तो साक्षात मुझे भगवान ही दिखते हो। तो महाराज, वो अज्ञानी मनुष्य से ज्ञान कराने वाले कौन हैं? परमात्मा ही हैं। परमात्मा ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दे करके अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करते हैं, ताकि हम ज्ञान के प्रकाश में आकर के आलोकित हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए, और हमारा भी कल्याण हो। इसीलिए संत महापुरुष इस धरती पर आते हैं। देखो, सुखिया भाई बड़ा सुंदर भजन गा रही थी, और भजन गाने के बाद में दो सुंदर बातें कही इन्होंने। कहा, जो दो अवतार होते हैं, भगवान आते हैं ना संसार में, तो किस रूप में आते हैं?
एक तो भगवान का नित्य अवतार होता है, एक निमित्त अवतार होता है। तो नित्य अवतार अर्थात हमेशा भगवान धरती पर रहते ही है। तो अब हमें क्यों नहीं दिखते महाराज रहते हैं, तो क्योंकि हमारी वह दृष्टि नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ददामि तम, जो अर्जुन है उसको भी भगवान कृष्ण भगवान के रूप में नहीं दिखते हैं। तो दिव्य चक्षु जब देते हैं तब भगवान का विराट रूप दिखता है। तो एक तो नित्य अवतार के रूप में, दूसरे निमित्त अवतार के रूप में। तो निमित्त कब आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब क्या होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। तो उस समय भगवान किसी न किसी कारण से अवतार लेकर के आते हैं, पूर्ण रूप में आते हैं, वो हो गया निमित्त अवतार। और नित्य अवतार का महाराज, जैसे हमारी परंपरा के दिव्य महान ऋषि अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वैदिक धर्माचार्य श्री दीपनारायण महाप्रभु जी, ऐसे महापुरुषों के रूप में भगवान नित्य इस धरती पर निवास करते हैं। और आज भी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान विश्वगुरु जी के रूप में हमारे मध्य में साक्षात भगवान ही विराजमान है। बस हमको देखने की कमी है कि हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है। तो दो रूप में आते हैं। तो उसी रूप में संत जो भगवान के नित्य अवतार होते हैं। और महाराज संत भगवंत अंतर नहीं निरंतर, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं करना चाहिए। जो अंतर करता है उसको वह फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कल्पवृक्ष देखा आप लोगों ने, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ कल्पवृक्ष लगा हुआ है ना। तो एक व्यक्ति था अपना, उसके साथ में पुराने समय की बात है, सामान लेकर के जा रहा था। तो इसकी सवारी थी, घोड़ा था, और घोड़े के ऊपर सामान लदा हुआ था, लेकर के जा रहा था। जाते जाते रास्ते में बहुत थक गया महाराज, थक गया। तो उसने सोचा एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जा कर के आराम कर लिया जाए। आराम करने के लिए गया और सोचने लगा, थक गया हूँ, थकने के साथ साथ भूख भी लगी है, यदि बढ़िया से भगवान की कृपा से भोजन मिल जाए तो महाराज क्या ही बात है। अब कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था, जैसी कल्पना की तुरंत कल्पना साकार हो गई और उसके सामने पंच पकवान आकर के रख दिए गए और तुरंत प्रसन्न हो गया और भोजन पा लिया। भोजन पाया तो महाराज अब भोजन के बाद क्या होता है, निद्रा आती कि नहीं आती। महाराज भोजन कर लिया, अब सोना है, आराम करना है। अब उसका मन हुआ आराम तो कर ले, लेकिन आराम करने के लिए कंकड़ है नीचे, कोई बढ़िया से खाट मिल जाए, हैं मखमल का गद्दा वगैरह, तो आनंद आ जाए। जैसी कल्पना की तुरंत बढ़िया जो है बेड आ गया, उस पर मखमल का बिस्तर आ गया और सो गया। सोने के पश्चात नींद आ ही रही थी, क्या थोड़ा पैर दर्द हो रहे हैं, कोई पैर दबाने वाला आ जाए तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। और जैसी कल्पना की सुंदर अप्सराएं आ गई पैर दबाने के लिए, सेवा करने के लिए, और उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, थोड़ी देर बाद वापस नींद खुली। कहा महाराज अचानक इस जंगल में मैं सो रहा हूँ, अकेला हूँ, सामान रखा हुआ है, शेर आ गया और मुझे खा गया तो क्या होगा। जैसी कल्पना की महाराज शेर आया और उसने शिकार कर लिया। बोले दीपनारायण भगवान ने की। तो महाराज परम पिता परमात्मा के रूप में जो सद्गुरुदेव भगवान आते हैं वे भी कल्पवृक्ष के समान ही है। हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, जैसी आस्था रखते हैं, जैसी श्रद्धा रखते हैं, वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। यदि हमको जो धन संपत्ति चाहिए तो सद्गुरुदेव भगवान क्या देते हैं, धन संपत्ति देते हैं। सामने उदाहरण देखो बैठे हैं ये भाई साहब, हैं देखो इनके जीवन की घटना की हमको आश्चर्य होता है। लोग भी आश्चर्य करते हैं और लोग विश्वास भी जल्दी नहीं करते, लेकिन आज आपके सामने प्रमाण है। एक नहीं अनेक ऐसे भक्त बैठे हैं जो साक्षात जिन्होंने गुरुदेव भगवान में श्रद्धा की, आस्था रखी, विश्वास रखा, और जो जो कल्पनाएं की, जो जो मनोरथ किया, वह का वह मनोरथ पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। तो ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है। इसलिए हमको समझने की कमी है, ऐसे संत महापुरुष हमारे जीवन में होते हैं, आते हैं, लेकिन हमें करना क्या है। देखो एक बात बताएं आपको, संतों के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए, भगवान के पास जाओ तो क्या मांगना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं महाराज, घर में रहते हैं ना, तो आज मंदिर जाएंगे या गुरुजी के पास जाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बना देते हैं,
एक हाथ लंबी, क्या क्या मांगना आज, और वो लिस्ट ले जा करके 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान ये सारी लिस्ट आपके सामने है। करते हैं कि नहीं करते? लेकिन भाई उस परमपिता परमात्मा अंतर्यामी को क्या पता नहीं आपको क्या आवश्यकता है, बताओ? पता है ना। तो जब संत के पास में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो सदैव यही मांगो, प्रभु मेरी बुद्धि सदकार्य में लगे, मेरे जीवन में सत्संग आए, मेरा मन प्रभु आप में ही लगे। यदि यही मांगोगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, नहीं तो धन संपत्ति तो आपको मिलनी ही है। जो केवट था, जानते हो केवट कौन था? भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे, उसमें नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए भगवान ने कहा केवट नैया लेकर के आओ। तो केवट ने कहा मैं नाव नहीं लाऊंगा प्रभु। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले प्रभु मेरी एक ही नाव है, इस नाव को आपने स्पर्श कर दिया, आपका चरण रज लग गया, तो महाराज ये नाव स्त्री बन जाएगी, और स्त्री बन जाएगी तो मेरे जो क्या दिनचर्या, जो रोजमर्रे की जो क्या जीवन चलाना, गृहस्थी चलानी है, वो कैसे चलेगी? एक ही नाव है, और दूसरी बात एक स्त्री है ही मेरे घर में, मेरी पत्नी है ही है, और दूसरी और स्त्री होगी तो पालना मुश्किल हो जाएगा, परिवार को कैसे पालूंगा? भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं। बोले प्रभु मैं सब जानता हूँ आपकी लीला, आपने पत्थर को स्पर्श किया तो स्त्री बन गई, ये तो लकड़ी और कमजोर है। तो बाद में कहा कैसे लाओगे? प्रभु आपका यदि चरण रज मुझे दे दें आप धोने के लिए, तब जा करके मैं नाव लाऊंगा। और भगवान ने बात मानी, चरण धोया, नाव में बैठे, पार गए। पार जैसे गए तो अब जब जाते हैं तो महाराज कुछ देना ही होता है आपको, कोई उस पार ले जा रहा है तो नाव वाले को कुछ देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कुछ दिया जाए, भगवान के पास कुछ है नहीं। भगवान सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उसी समय माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। सच्ची पत्नी वही है कि किसी भी परिस्थिति में पति का साथ न छोड़े। पति की क्या परिस्थिति है, सुख में भी तो भी साथ रहे, दुख में भी तो भी साथ रहे। तो माता जानकी जी समझ गई कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए, अपनी जो मुद्रिका थी उस मुद्रिका को उतार करके दे दिया, स्वामी यही इस नाविक को उतराई दे दीजिए, आने जाने का किराया हो जाएगा। जैसे भगवान देने लगे तब केवट ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब

सिया राम। उस केवट ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों क्यों नहीं चाहिए? वही आपका कार्य क्या है, इस पार से उस पार ले जाना, और ले जाते हो तो उसके बाद क्या होता है, आपकी पेट पूर्ति होती, परिवार चलता है। कहा प्रभु जो मेरा कार्य है आपका भी वही काम है, आप भी क्या करते हो, इस भवसागर से पार करते हो और मैं भी इस किनारे से उस पार करता हूँ। प्रभु मैंने आपको इस किनारे से उस पार किया है तो आप भी क्या करना, मुझे उस पार कर देना, यही मेरी उतर है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो सज्जनों, गुरुदेव भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, तो यही मांगो, ये याद कर लो चौपाई, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु अब तो अब बस आपका अनुग्रह ही चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, और कुछ धन संपत्ति दौलत मुझे नहीं चाहिए। आपकी कृपा से पल रहा है, सब काम चल रहा है, बस यही है कि मेरा मन विचलित हो रहा है। इसलिए से मन को शांत कैसे करें, प्रभु आप कृपा करें मेरा मन लग जाए। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, आप सभी इस परम पवित्र सत्संग सभा में आए हैं, और आकर के इस दिव्य सत्संग सभा के जो हीरे मोती है, क्या है, हीरे मोती है, अनमोल रत्न है, ये बार बार मिलने वाले नहीं है। देखो हमेशा नहीं मिलते हैं, बाबू जी की कृपा से आप लोग जुड़े हुए हैं, और साल में दो तीन अपने ऐसे अवसर आते हैं, और उसमें भी यदि छुट्टी मार दोगे तो महाराज इसका फल मिलने वाला नहीं है। ये परम पवित्र और परम दुर्लभ भी है। तो इस दिव्य सत्संग सभा का आप लाभ लें, आनंद लें, भजनों का आराम तो करना ही है, सोते सोते आधा जीवन बीत गया, आधा और बीत जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए आए हैं तो दिव्य आनंद लें जब तक शरीर साथ दे, एक दिन की बात है, बाकी की हमेशा रात ही रात है, सोना ही सोना है। इसलिए आज दिव्य आनंद ले, दीपनारायण भगवान की। अब थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल दें, बाबू जी की कृपा से थोड़ी भाषा आई, ये भी लोग सज्जन गुरुभक्त बैठे हैं, तो सैल्यूटेशन टू द डिवाइन, ओम श्री अलकपुर जी सिद्धपीठ परंपरा। आई वुड लाइक टू बो हिज होलीनेस अवर बिलव्ड गुरुदेव विश्व गुरु जी होली फिट ऑन द डिवाइन ओकेशन ऑफ महाप्रभु जीज एनिवर्सरी। वी आर हैविंग डिवाइन सत्संग ऑन बिहाफ ऑफ महाप्रभु जीज डिवाइन डे, समाधि डे, एंड वी ऑल आर सो फॉर्चुनेट वन, लकीस्ट वन, दैट वी आर हैविंग दिस सत्संग इन ओम आश्रम, विच इज द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ योगा इन डेली लाइफ। हियर अवर डियर ब्रदर महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, ऑल डियर भक्ताज, ऑल द सन्यासीज ऑफ दिस परंपरा, आई वुड लाइक टू से हरि ओम टू एवरी वन एंड वेलकम टू दिस डिवाइन सत्संग। विद द ब्लेसिंग ऑफ विश्व गुरु जी वी आर हैविंग सत्संग एट भक्ति सागर। वी हैव गॉट ऑल्सो ब्लेसिंग ऑफ विश्व गुरु जी टूडे इवनिंग, ही वॉज हियर, ही वॉज ब्लेसिंग अस, वी हैड प्रेयर विद हिम, एंड देन ही सेड ओके यू डू सत्संग, I am going sitting there, blessing from there. So Vishwa Guruji is always with us. He is always giving blessing wherever he is. He is always thinking about us. He is always

हरि ओम। सभी भक्तों ने प्रसाद पाया भाई? सबने प्रसाद पा लिया? हाँ, तो प्रसाद ही बनाने की जो सेवा में लगे हुए हैं अपने गुरु भक्त, जो गुरुदेव भगवान के शिष्य श्री पृथ्वी सिंह जी और महेंद्र सिंह जी, वे हमेशा जो है भगवान की कृपा से सत्संग का लाभ तो कम लेते हैं, लेकिन आप लोगों की जो है क्या कहते हैं ना, भोजनामृत का, प्रसादी का लाभ देते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी भक्तगण आए हैं आप लोग प्रसाद लेकर के, आज की रात्रि तो कम से कम जब तक शरीर साथ दे तब तक क्या करिए, सत्संग का श्रवण करिए। हमेशा हमेशा तो मिलने वाला है नहीं, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से जो मिला है, जो मिला है उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग कहाँ करना चाहिए, सत्संग में। सत्संग का तात्पर्य क्या है, सत्संग, सत अर्थात सत्य, जो सत्य है उस सत्य का संग करना, उस सत्य के साथ रहना, उस सत्य के साथ जीना, उस सत्य के साथ चलना, यही क्या कहलाता है, सत्संग। तो सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं, आप सत्य मानते हो ना कोई चीज़ को, तो किसे कहते हैं सत्य? सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में एक समान रहती है, जो कभी बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं, सत्य। किसी व्यक्ति ने कोई बात कह दी और वो बात बदल गई कि पहले तो आपने ऐसा कहा था अब ऐसा हुआ नहीं, तो वो सत्य कहलाएगा? नहीं, जो तीनों कालों में एक समान रहे उसे क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो तीनों कालों में एक समान कौन रहता है, क्या आप, हम, जो सब दिख रहा है, झूपा है, ये शरीर है, ये मंदिर है, ये सत्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, लेकिन यह वास्तविक सत्य क्या है? देखो, आप स्वप्न देखते हैं, हाँ देखते हैं स्वप्न, तो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हाथी घोड़ा आया, बैठ करके गए बढ़िया से, सब देवता सामने आए, और जैसे ही नींद खुली तो स्वप्न टूट गया, तो फिर क्या कहते हैं, ये तो सत्य नहीं, सपना था। उसी प्रकार ये संसार भी क्या है, सपना है। कौन कह रहे हैं सपना है, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, भगवान शिव कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं,

जय जय राम। भगवान शिव कह रहे हे उमा हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। भगवान शिव अपना अनुभव कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन। भगवान का भजन, भगवान ही सत्य हैं, बाकी सब ये तो जगत क्या है, सपना है। महाराज सपना कैसे हैं, कैसे सपना बताओ। सामने तो दिख रहा महाराज, सपना वो होता है जो दिखता पर होता नहीं है, पर यहाँ तो दिख भी रहा, हो भी रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ, सामने हम बोल रहे तो सत्य दिख रहे कि नहीं दिख रहे। लेकिन सपना कैसे हैं कि जैसे ही यह समय बीत जाएगा, कौन सा समय, जो समय चल रहा है वर्तमान समय में, तो मैंने कहा तीनों कालों में, वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीन काल होते हैं, तीन काल की सत्ता होती है। तो क्या यह तीनों कालों में है, क्या 100 वर्ष पहले आश्रम था, 100 वर्ष पहले हम लोग थे क्या यहाँ बताओ, 100 वर्ष पहले थे इस शरीर में, नहीं थे, तो भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में है, और आगे भी पता नहीं 100 वर्ष बाद रहोगे क्या। जो तीनों कालों में नहीं है वो क्या है, असत्य है। और जो तीनों कालों में, भगवान पहले भी था, अभी भी भगवान है और आगे भी रहेगा। कहाँ भगवान, परमात्मा के जर्रे जर्रे में परमात्मा व्याप्त हैं। ईसा आवाश्यमिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, परमपिता परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। किसमें, संपूर्ण जगत में। एक प्रश्न भी उत्तर भी है, क्या है बोलो, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, और उत्तर भी यही है, कण कण में भगवान है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को सदैव स्मरण करते रहो, सदैव याद करते रहो, सदैव भजन करते रहो, तो महाराज बेड़ा पार है, नहीं तो इधर से उधर आर पार तो होना ही है। बोले दीपनारायण भगवान की। अब अपनी मधुर वाणी से पप्पू जी गर्ग आपको भजन सुनाएंगे। हमारे गुरु भक्त अशोक जी आप भी इधर आ जाएं, गणपत जी आप भी, और बैठ करके दिव्य प्रकार से भजनों का आनंद हम सबको प्राप्त कराएं।

हरि ओम। माता जी लोग, आप लोग थोड़ा विराम करो, फिर बाद में सुबह फिर गाने का अवसर मिलेगा, ठीक है? अभी भजन मंडली आई हुई हैं, इनको भी थोड़ा अवसर दे देते तो अभी अशोक जी चौहान अपने सुमधुर कंठ से बाबजी के भजनों के द्वारा हम सबको आनंद प्राप्त कराएंगे। अशोक जी चौहान, आप हमारे गुरुकुल में संगीत के अध्यापक भी रहे हैं और बाबजी की कृपा से, माँ प्रभु जी की कृपा से आपने स्टेट लेवल तक भी संगीत के माध्यम से अपने प्रतिभा को जो है राजस्थान का नाम उजागर किया है, राजस्थान के नाम को जो है वहाँ तक लेके गए हैं। तो सब बाबजी की कृपा है। और यहाँ का इतिहास भी सुनाऊँ मैं आपको, तो यहाँ इस आश्रम में जब से मैं बालपन से अध्ययन कर रहा हूँ तब से अनेकों अध्यापक आए हैं और अनेकों अध्यापकों ने एक दो वर्ष इस आश्रम में निवास किया, रह करके सच्ची श्रद्धा से ईमानदारी से पढ़ाया। और जिन लोगों ने बाबजी पर विश्वास किया, आस्था रखी, ऐसे 50-60 अध्यापक टीचर्स मैं जानता हूँ जिनकी गवर्नमेंट में जॉब लगी, ये सब बाबजी की ही कृपा है। यदि आपकी सच्ची श्रद्धा है, आस्था विश्वास है, तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा आपकी सुनता है और आपके मनोरथ को पूर्ण करता है। तो उसमें से हमारे आदरणीय गणपत जी, आप भी जो है बहुत वर्षों तक आपने अध्ययन कराया और अभी वर्तमान में आप जो है सरकारी में जो है अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सुंदर प्रकार से केमिस्ट्री इत्यादि का अध्ययन कराते हैं। तो बाबूजी की कृपा बरसती हैं, बस लेने वाला चाहिए। परमात्मा तो क्या करता है, वर्षा करता है। अब आपके पास कितना सामर्थ्य है, लोटा लेके जाओगे तो महाराज लोटा भरोगे, थाली लेके जाओगे थाली, बाल्टी लेके जाओगे बाल्टी। तो इस प्रकार परमात्मा की कृपा बरसती रहती है। तो आइए हम लोग सुनते हैं अशोक जी चौहान को। दीप नारायण भगवान की जय हो।

0: महाठगनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिया कर डोले द रोप हैव इन हैंड टू हैंग यू अप बट टिल दैट सी हैव वेरी स्वीट लैंग्वेज वेरी स्वीट वेरी हम्बल हाउ टू कैच यू एंड देन यू आर होल्डिंग लाइक दिस स्नेक इन योर हैंड्स। सो दिस माया दिस संसारास देयरफॉर इट इज सेड पतन और उथन दो बोथ हैज बीन सॉन। सो भगवान विष्णु सेठ लक्ष्मी देवी गॉडेस लेट्स गो बैक टू अवर वैकुंठा दैट इज मच बेटर सम टाइम टू टाइम नो नारदा कम्स दैट्स ऑल एंड सो केम देयर एंड दे वेंट सो बट बोथ वन सीड सो द रूट्स आर इन वन बट वॉट इज प्राउड केम आउट वन इज दिस एंड दैट सो वॉट इज दैट वन वन इज कॉल्ड संघ संघ मीन्स द कंपनी कंपनी ना विच काइंड ऑफ कंपनी यू हैव नेगेटिव वे और स्पिरिचुअल पॉजिटिव वे नाउ दिस इज कॉल्ड ओनली वन वर्ड संघ नाउ इन द वन वर्ड वन लेटर संघ नाउ बिफोर संघ इफ यू राइट सत व्हाट बिकम्स सत्संग एंड इफ इंस्टेंट ऑफ द सत यू राइट कु व्हाट हैपन्स कुसंग बैड सोसाइटीज सो So root is there, but how now the branches will develop this side or that side. So in the Kali Yuga is a very, very hard, difficult to get good Sangha. There is a lot of sweet words, there are a lot of tricks, but at end there will be nothing. So this one bhajan was Mahaprabhuji's, then I will not translate all, otherwise morning I have to serve you breakfast here.
1: Yeah, you miss your plane.
0: So therefore, sir.

सत्संग ओ सज्जन वाली लागे ओ सदाई सत्संग। ओ माय डियर वन, ओ माय फ्रेंड्स, आई लव सत्संग। श्रुति और स्मृति गावे, श्रुति व्हाट इज स्पोकन, स्मृति व्हाट इज इन मेमोरी। दिस इज फ्रॉम वेदास, श्रुति स्मृति, श्रोता श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय। दिस मेनी डेफिनेशन आई विल टेल यू आफ्टर। सुख बैंकुंठ स्वर्ग नहीं दुर्लभ, दुर्लभ है सत्संग। सुख बैंकुंठ

श्री अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जय।

गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यम् ॐ शांति शांति शांति। अलकपुरी जी महादेव की, देवादि देव देवेश्वर महादेव पूज्य भगवान दीप नारायण महाप्रभु की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन भारत माता की, ब्लेस्ड सेल्फ स्पिरिचुअल सीकर्स भक्तास डियर वंस राउंड द वर्ल्ड, दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम होली लैंड भारत, जाडन राजस्थान पाली, फ्रॉम द गुरुकुल। गुरुकुल मीन्स दैट एजुकेशन सेंटर वेयर द मास्टर द गुरुदेव इज गिविंग द नॉलेज। द स्कूल्स द कॉलेज एजुकेशन सेंटर्स ऑल बिगेन विद द ऋषिज। There was no schools in the whole world. It was only taught by the great rishis. And the first university in the world, where was it? Pehli university kahan thi sansar mein? Takshila. तक्षशिला कौन से देश में था? भारत में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी

the money for this project of Gyanputra. अब आपके पास अब स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल का समय हो गया, चालू भी हो गए, आप मैंने आपके सामने बैठ रहे, तो कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, एक जगह में बैठ नहीं सकते, नींद तो आती रहती है, अभी तो 9 बज गए, तो शायद जाने की समय है या स्टडी का समय है। यहाँ का प्रॉब्लम है जनरल पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है स्टडी में कि सब लोग जनरली बच्चे सोच रहे हैं कि स्टडी का क्या मतलब है, एग्जाम तो आएगा दिसंबर में, जब एग्जाम आएगा मार्च में, एग्जाम आएगा अप्रैल में, अभी क्या स्टडी करना है। तो आप ऐसे कीजिए, 365 दिन है, आप आज 6 महीना के लिए खा लेना, एक दिन में 4 रोटी आप लेते, ठीक है, सुबह 2 शाम को 2, ठीक है, मान के चलो 5 रहते, 6 लेते, तो 6 महीना में कितना दिन होगा, 180 दिन, 180 दिन में 5 रोटी एक दिन का हो गया कितना, 900 रोटी। तो ठीक है, आज सुबह हम बना देंगे भंडारा, 900 रोटी सबको खानी है, फिर 6 महीने आप फ्री हो गए खाने से, संभव है? इतनी मामूली चीज है, अब क्या है, 900 रोटी खा लीजिए, क्या है, कोई खास नहीं है, 6 महीना का आपकी भूख नहीं लगेगी, ऐसे नहीं चलता है ना। तो अगर ऐसे नहीं चाहते, आप क्या सोच रहे कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी 365 दिन की पढ़ाई कर सकते, पूरी 6 महीने की पढ़ाई कर सकते एक रात में, वो एक रात भी नहीं, 2 घंटे में, अब यहां से रवाना होकर के 9 बजे बैठेंगे पढ़ाई करने में, 11 बजे समाप्त, सुबह एग्जाम दे देंगे और एकदम 100% मार्क्स आएंगे, संभव है या नहीं है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो पढ़ना होता है रोज डेली, तो बड़ाई टुकड़ों में होता है, जैसे खाना टुकड़ों में खाते हैं, हर दिन 5 रोटी खा सकते, कोई टेंशन नहीं, 10 रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन 900 रोटी खा नहीं सकते। तो वैसे ही रोज 900 पेज थोड़ी पढ़ सकते। हमारे पास जयपुर में भी बच्चे आते ओपन स्टडी करते, 3 दिन में 800 पेज की किताब कैसे पढ़ेंगे? इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं, अगर डेली हर दिन अगर आप मान के चलो 1 घंटा पढ़ाई होगा, तो 6 महीना कितना हो गया घंटा, 180 तो हो गया, नहीं हुआ तो 180 घंटा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे? तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना, अगर डेली 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, 1 घंटा, कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे, पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, तो आपकी मार्क्स जो आएंगे, आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी, आपकी जो IAS IPS बनना है सब बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे, अगर एक साथ में कोशिश करें तो क्या होगा, असंभव। इसलिए आपकी यहां आश्रम में रहते, यहां कोई घर की टेंशन है ही नहीं कि कोई माँ बाप कोई काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा, पढ़ाई का, इसलिए माता पिता ने आपको यहां भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहां क्या करते, मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना, क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, जब तक हम हमारे गुरुजी यहां है तब तक स्कूल चलेगा, और गुरुजी को कैसे खुश कर सकते हैं?
कम से कम कोई तो मार्क्स आए.

0: अगर मार्क्स आएंगे तो कौन, हमारे गुरुदेव भी खुश होंगे और कहा माता पिता खुश नहीं होंगे, अरे मेरा बेटा 95% आ गया। अभी है कोई यहां 95% के, 100% के, 80? इसलिए ये नहीं होता है कि हम पढ़ाई करते अचानक एग्जाम से एक दो तीन दिन पहले, बस एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में पढ़ाई करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, कल तो गुरु पूर्णिमा थी, तो आज से संकल्प ले लो कि आज से मैं पढ़ाई रोज करूंगा और करते रहूंगा। पढ़ाई की अंत कभी होगी नहीं, पढ़ाई तो कुछ भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। सो नॉट ओनली दैट वी हैव ज्ञानपुत्र प्रोग्राम हियर, वी हैव ऑल्सो आवर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरुदेव वी हैव योगा प्रोग्राम्स हियर एंड वी हैव मैनी आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम West who are coming and who are studying, some for the longer times, for some for the shorter time. And this is just that to see that learning never ends. And learning comprises also of the physical part, which we are trying to do here with the yoga, spiritual part with Swamiji's teachings of Ramayana, Mahabharata, and other Upanishads. So definitely, we are open university, we are open school. Of course, it's very difficult for many of us to get a visa, but still it's possible. So on this occasion of Guru Purnima, I would like to thank to our dear Gurudev, Vishwaguruji, Vishwaguru Swami Maheshwaran Puriji Maharaj, who gave us this opportunity, who gave us this ashram and this possibility to study Indian culture, to study the yoga and to study old ancient traditions. With these words, I would like to finish, and I would still like to thank to all of you who came. I would like to thank to all of you who are donating and who wants to donate either by work and so on. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
1: गुड, थैंक यू, थैंक यू ने मैं हूं, थैंक यू। एंड यू सी द ऑल विद्यार्थीज एंड द लाइफ थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। नाउ ओनली द हमारे गुरुकुल के बच्चे जो है टर्न टू द कैमरा साइड, मुंह देखो, दूसरे लोग नहीं। All these vidyarthi turn to the, don't go close to the chela, nahi dikhega beta. Tu idhar se khada ho ja. Bas beta, yahi khade ho ke de, ya nazdik aa ja, bas. Okay, we will see if when is. देवेश्वर महादेव की जय, अलकपुरी जी महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की।

निर्मा ओम शांति शांति शांति। बस अब मेरी तरफ झुक आज देख लो इस कैमरा में, देखो दिख रहे हो तुम लोग, तुम दिख रहे हो पीछे खड़े हो, बैठ जाओ। बस थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इन द स्कूल व्हेन वी हैव द प्रेयर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स देयर। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद। दिख रहे हैं सभी के? नहीं दिख रहे? यस, टाइम फॉर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ अपने यहाँ हर महीने में एक दो बार, और मैं आऊंगा तब तुम्हारे को पूरे संसार की यात्रा करा देंगे स्वामी जी टेलीविजन के जरिए।

0: या विच
1: श्री दीप नारायण भगवान की श्री श्री देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधव।

0: देवादि देव देवेश्वर महादेव की
1: जय।
0: अलकपुरी जी महादेव की जय। 11 टाइम्स residing the Om.
2: Diese Netzer Omless.
0: There are different centers.
2: Vannak különböző központok.

दीप नारायण भगवान की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की अलख।

0: मंगलम। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्वागुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: हरि ओम।

दीप नारायण भगवान की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की अलख।

0: राधे भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेवा की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सतगुरु देवा की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
1: You do it, Puspa. One version. If I like it more, then I will have one more.
2: Satguru Dev ki jai.

0: राजे भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री होली गुरु जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु जी परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की जय।
2: वन मोर भजन, डजंट मैटर विच वन।

बोले श्री प्रणाम भगवान की जय, श्री देवपुरी समादेव की जय, श्री रेवत सिंह जी की जय।

महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिया कर डोले, द रोप हैव इन हैंड टू हैंग यू अप, बट टिल दैट सी हैव वेरी स्वीट लैंग्वेज, वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, हाउ टू कैच यू, एंड देन यू आर होल्डिंग लाइक दिस स्नेक इन योर हैंड्स. सो दिस माया, दिस संसारास, देयरफॉर इट इज सेड पतन और उत्थन, दो बोथ हैज बीन सॉन. सो भगवान विष्णु सेठ लक्ष्मी,